जय श्री साई राम। साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार भगवान बाबा ने कुछ विद्यार्थियों को साक्षात्कार कक्ष में बुलाया। भगवान बाबा ने एक से पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? बोला, स्वामी MSc। भगवान बोले, व्हाट इज MSc? विद्यार्थी बोलता, स्वामी मास्टर ऑफ साइंस। फिर बाबा ने दूसरे लड़के की ओर देखा, बोला, तुम क्या पढ़ रहे हो बेटा? तो स्वामी MTech। भगवान ने पूछा, MTech क्या होता है? स्वामी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। भगवान बाबा ने प्रोफेसर की ओर देखा, बोले, प्रोफेसर हु इज द मास्टर? मास्टर कौन है? प्रोफेसर बोले, स्वामी हु हैज मास्टर्स द सब्जेक्ट? जितने किसी विषय में मास्टरी कर लियो। स्वामी बोले, रॉन्ग, एनीवन एल्स? दूसरा प्रोफेसर बोला, स्वामी मास्टर इज वन हु इज एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। भगवान बोले, रॉन्ग। तीसरा प्रोफेसर बोला, मास्टर इज द वन हु वाज अथॉरिटी इन द सब्जेक्ट। स्वामी सेड नो। फिर भगवान बाबा ने बताया, मास्टर का मतलब क्या है? मास्टर इज द वन हु हैज कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस। यू ऑल आर मिस्टर्स, अर्थात सेवकों। मास्टर कौन है? स्वामी। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण कर लिया हो, वह मास्टर है। और जो इंसान अपनी इंद्रियों के पीछे भागता रहता हो, वो मिस्टर है, अर्थात सेवक है। भगवान बोले, आप MA MSc कर लेते हैं और अपने नाम क्या

लगाते हैं एमए एफएससी, विचार कीजिएगा, डिग्री आपको नहीं मिली है, डिग्री तो आपकी याददाश्त शक्ति को मिली है, आपकी मेमोरी को मिली है, डिग्री तो आपके एक्सपेरिमेंट्स को मिली है, आपके अटेंडेंस को मिली है। अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपने जो पढ़ा है उसको अगर आप प्रैक्टिस में लेके आते हैं, जीवन में उतारते हैं, उस विद्या का प्रयोग समाज की सेवा के लिए करते हैं, तब तो हाँ हम कह सकते हैं आपने जो पढ़ा है वहाँ आप जा रहे हैं।